0: morning, Mr. Johan.
1: Good morning. Rahul.
0: Hi. नौकर ने खून किया, नौकर ने खून किया, आओ.
1: ए, अरे रे रे रे, वो देखो. Hi guys.
0: आओ. Hi.
1: कैसी लग रही हूँ मैं? कैसी लगी? बिल्कुल टीना जैसी ना?